जो किछ करना सो कर रहा। सो दर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा के हा सो कर के हा, जित वह सर्व संभाले बाजे तेरे नाद अनेक संखा। केते तेरे वावन हारे

0: गुण गोपाल निध गायण शांत सहज रहस्यमन उपजेओ सगले दुख पलायण। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 713 ते 714 पर यह हुक्मनामा टोडी राग विच गुरु अर्जन देव महाराज जी दी बख्शिश है जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। औसत का जो सत्संग जी मारे बख्शी त्याग सकते हैं अपनी श्रद्धा पावन सहित पितर रवाणी सुखमणी साहब जी संपूर्ण पाठ शर्म किए ने इस वे संध्या समय जान के सोधर राय साहब ने पाठ शर्म किए हैं अरदास साधियां भरिया ने और मारे बख्शे पितर रामे शरण किए हैं सत्संग पाठ समय गुरु साहब ने आप गुरु खातन बख्शिश किया है और सत्संग जाप संगत पता है कि स्वामी जी आरंभ हो रहे हैं। सब तो पहला कीर्तन कर के भाई लख सिंह जथा 6-7 बजे तक भाई साहब आरती कीर्तन नाम सिंह द्वारा आप सब संगत मार सचाना जोड़ने वास्ते महान बुराला करे 7 लाख 7 मिनट तक कथा होगी 7 मिनट 8:30 तक कीर्तन होगा भाई सुरजीत सिंह।

पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायन शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख पलायन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिलारा गुरु जी की मेला कराए को अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कृताखी कृतिकाय विचारो तेत कर गाओ सोहिला शिव सृजन हर तुम गाओ मेरे निरपाओ का सोहिला हो अर्जित चले सदा सुखोय राहो नित नित जड़े समालन देखेगा देवन हार तेरे दान किमत ना पवे तसदा ते पुण समार संबत साहा लिखिया मिल कर पाओ तेल देहो सजन सीसड़िया जो हो वैसा सो मेल कर करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हर सिमरिय नानक से देव लागा सा मेला पहला छे घर छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरु एक होवे स्नेक बाबा जय कर करते किरत होए सोगरा खुड़ा तो विरा हो विश्वे चसिया कड़िया पहरा तिवारी मा होआ सूरज कुर तनेक नान करते के किते सरावतना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती तो अपना नौ पौन चो रोक रे सगल बन लाए फुरंत ज्योति कैसी आरती होए पवखना तेरी आरती अनत सुदवाजन तेरी राहो सहस तो मैं नैन है तो को सह सुमूर्त नायक तो ही सहस पद विमना ने पद बंदिन सहस तबंदी चरत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन सब मैं चानन होए गुरु साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पाव है सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोहित नंद अंदिन मोहि आय प्यासा कृपा जल दी नानक सारी को हो जाती तेरा नायवा सारा बोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु प्रिया मेरे साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखी गुरु पाय मन हल मंडल मुंडा हे कर साधु अंजुली पुनो डाय कडंडो पुनो डाय राहो साक तो हर साधना जानिया तिरंतर हो मैं कंडा हे जो जो चला है चुबह दुपाव जमकार सह से डंडा हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पोखंडा अवनाशी कृपा परमेश्वर वो सुख ब्रह्मंडाय हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे राखो राख लुडा हे जनानक नाम दाटे का नामी सुख मंडा हे रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत कहर की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे विष्णु सुला औ पटै दिन सहनारे मन गुरु मिलका सवारी राहो एव संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए प्यावे एहो रस अकत कथा तन जानी जाको आए सोई बिहा जो हर गुरतीम रहें बसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास।

अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विषम परे कै नाम जपत अगणत अनिकै वेद प्राण सिमरत सोदाख्यर कीने राम नाम इक आख्यर।

नानक उन संग मोहे उदारु, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै, प्रभ कै सिमरन पहु न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तब पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दर गहमानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन परवानु, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधानु, प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हरनेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन के सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम

ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗਹੂਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੂਟ ਪਾਵ ਖੂਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨ ਜਾਹੀ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਾਂਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਝਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮੁ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਚਾਮੁ, ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਕਾ ਮਨ ਤੁਜ ਆਕਰ ਕੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਮੰਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗੇ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਪਰੈ ਨ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਟਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪਰਵਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਥਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋ, ਇਸ ਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸੁਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਤੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਮਹਾਂ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ, ਅਗਨ ਬਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਕਨਿਕਸਵ ਹੈ ਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤਉ ਭੀ ਹੋਮੈ ਮੈ ਨ ਜਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਤ੍ਰਾਪੈ, ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਗਨਿ ਬੁਝੈ, ਕੋਟ ਪਾਪ ਦਰਗਹਿ ਨਹਿ ਸਿਜੈ, ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਉਪਿਆਲ, ਬੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਨ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ,
हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लूरै, सा संगे होमै चूरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन समदृष्टिता, नानक पाप नहीं लेपा। निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे कौ नाव तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटाकु देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे, अपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्त तुम ते हुए, नान कवर न जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जी घट वसै हर नाम। शलोक निर्गुण यार एनिया, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल थे कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, भर जोवन भोजन सुख सूद। बिरद पयाओ पर साक्षैनु, मुख पयाओ बैठ कौ दैनु। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद तारु पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला। जे प्रसाद भोगै सबरसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करनी तरसना, तिसै त्यागवर संग रचना। ऐसे दुख बुड़ंद व्यापे, नानक काड लिहु प्रव्यापे। आदंत जो रखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गुवार। जाकी सेवा नव निध पावै, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सा सदा हजूरे, ताकु अंदा जानत दूरे। जाकी टहलो पावै दरगै मानु, तिसै बिसारै मुक्त अजान। सदा सदा भूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्या कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै। जो छटना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए। अंधकूप में पतत विकराल, नानक काढ लिहु प्रभ दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पे अंतर मल माया, छपस नाही कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अग्न बार तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरै था। जाके अंतर बसै प्रव्याप, नानक तेजन सह समात। सुने अंदा कैसे मार्ग पावै, कर गै लेहु कूड़ निभावै। कहां बुझारत बुझै डूरा, निष्कहियै तो समझै पूरा। कहा विष्णु पद गावै गुंग, जतन करै तौ भी सुर भंग। कै पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू हां उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै।
संग सहाई सुआवै न चीत, जो बैराई तस्य प्रीत। बलुआ के गृह भीतर बसै, अणद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन मनहि प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह। हे आहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। तुम आत पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कन्हेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ तै, लग है आन सुवाई। नानक हु न सीजई, बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, ताको कीजै सत नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व तोग नानक तिन पाया। अगंत सब अपनी दे रास, खात पीत भर तैन दुलास। अपनी अमान कछ बहर सावले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्ती सी आज्ञा रखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै। उसते चौगन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिर की छाया स्यो रंग लावै, उ बिन सैव मन पछतावै। जो दिसै सो चलन हार, लपट रहो तै अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै नेहि, ताको हाथ न आवै केहि। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानका फुले लाई। मिथिया तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजुवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोम अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्तव्यमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाय। गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंड लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेशै आप न करै, आवत जावत जन मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पह माने। आप है आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस पावै तिसले लड़ लाए, तान तनंत रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक
काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अंगमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्यागत अवर लुभावै जे प्रसाद सुख सेज सुवीजै मन आठ पहर ताका जस गावीजै जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दर गह मान पावै नानक पत सेती घर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरौ ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद आप भुखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों आलस की जै जे प्रसाद अस्व हस्त सुवारी मन तिस प्रभु कौ कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक अलखै इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निक्की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनै करण नाथ जे प्रसाद पिकै बिस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभु त्याग विरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तिर कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास पर अब सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मतुतम होए सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु नाथ सुलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुनमीता नानक बिनवंता साजना की चर्च कथा अष्टपदी साधक संग खोजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभनीरा साध संग सबोत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संगे कुपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध कै संग अगोचर मिलै
साध के संग सदा पर फुले, साध के संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुई सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतु तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस्तग उचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय कर सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग श्रभ थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानह, जीता सुनह तेता बखियानह, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै कस बिन कोए, नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व कौशोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरजेक, ज्यों वसुदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाओ, नानक ज्यों पाव का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समार, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहि, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट मृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कांत न पारु नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष वेदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व में पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रस न परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रै रूप न पेखै नित्र साध के टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परसु बैसनु सोजी सुपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए ने कर्म तिस बैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत की तन संगराचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दिड़ै अवरह नाम जपावै नानको वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सासंग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नामा तुम मैं सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नयावै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुख मैं जानै स्थूल चौ वर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्ण मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सासन पावै जन कोए कर कृपा अंतर उतार है पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार है सर्व रूप का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास
तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसन दरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संगत मुदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उसोग सदा आनंद तै नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित घर राखै तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरवाप होय अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावा नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ध्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगात्म निकोर कई कोट पर दर्भ को ही रह कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर वृक्ष निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किनर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाज सब ते नेरे सब हूं ते दूर नानका पलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरक निवासी कई कोट जन्म है जीवह मरै कई कोट बहु जोनी फिर है कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने भोपात प्रभ ते हुए प्रभ समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारै को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवह अमर भय सत सद ही जीवह कई कोट नाम गुण गावै आत्म राख सह समावै अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोई
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਕਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤਿਰਾਕੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਸੁਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ਼ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦੈ ਦਿਸਤਾਵੈ ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ਼ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸੁਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਛਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਉਪਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਵਨਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਮਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਪੇਘਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪਰਵਰਾ ਕਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੇ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਾਵੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਿਆ ਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਿਨ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੁਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤਿਨ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੁ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨ ਬਧੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ ਕੂਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਧਾਰੀ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਚਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਿਦ੍ਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗੈ ਕੋ ਕੈਸੀ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਨੈ ਮੁਝਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ
जब वे जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचलना ही चीत जब लग मुँह मगन संगमाई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लको उठता वै तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खमरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड़पाकी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन कर्ण हार उसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किच किनो सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझे देखे करे बवे कपे अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप प्रतिशय समझे आपे रचिया सब कैसा थाप किनो अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किच हुए थान तनंतर एक कैसु अपने चलताप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मया मन अपने माही नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन तान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जले संत कै दुखन सब को छले संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाहे नानक संत पावै तावे भीगत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक किन टिकन न पाई संत का निंदक मां हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते ही संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत भाव है तो उसका भी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी कवर न रखन हार नान संत भावै तां लै उबार संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यो जल बिहोन मछली तन फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पाव किंद नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै केला जो भगवान तिलकेत माही दुहिला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
संत के दुखी को दरगह मिले से जाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई हुए, पया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरा, सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपको नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजन हूं, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए, अष्टपदी मानुक की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रह अगाए, बौर न तृष्णा लग गए आए, मारे रखे कुआ मानु कै किच नाही हाथ, जिसका हुक्म भू सुख होए, जिसका नाम रख कंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगड़ न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग बिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पहचाने, इतुत की सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक जिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपने आप सुजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, वंदिर कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जे जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस पर वे अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखूं तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलताप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अनेक जुग त्रिच ताप उथाप, अविनाशी नाही किछ कांड, धारण तारिहो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जि पाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुसुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुर का सब जपहे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करह बट पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरखो उत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुए सु हुए, करने हार पछाने सुए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहि समाये, हुए सुख निदान उन्हु बने आए, आपस को आप दिन मान, नानक प्रभ जन को जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभृता जाननहार, जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गार्डन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते विरता कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचै कोए, तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जो सगल घट सो है,
तनवंता होय क्या कुगर्भ जा सब किस तिसका तिया दरवै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को हुए बह दातार तिस दीन हार जन गावा जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सूजन सदा अरोग जो मंदिर को थम मैं थमन त्यों गुरु का शब्द मन अष्टमन ज्यो पाखाना चढ़ तरह प्राणी गुर चरण भगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगा ज्यो माँ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नान की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तुत सह चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बसता ही तेरे संग लपट रे रस लुभी पतंग राम नाम जप हृदय माहि नानक पत सेती घर जाहि जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहु मन मूल राम नाम हृदय महतूल लाद खेप संत संचाल अवर त्याग विख्या जंजाल धन धन कह सब कोए मुखु जल हर दर गै सोए इहो वावार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्क साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइये कुर्बान साध सेवा विट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाइये अनिक बिगंते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है ऊट गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतको जीवालनहार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जा की दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाही सब के तिसका उपरन है जोग तिस बिंदु सर हुआ नो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जिसके मन गुर की प्रतीत जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत पग सुनिए त्यो लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रह तू सच हृदय सचमुख कह तू सची दिल सचा आकार सच वर्ता सच अपसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सूजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्रो गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानक जिस होवे सुप्रसन्न बदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख मन की तू प्रीति आग तिस्ते परे नाही किछ कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे पीना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंदो साथ तेरे की चरणी पाओ नानक है मन हो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो हरन परन जा का नित्र फूर तिसका मंत्र न जाने हो अनदरो मंगल सजा कह सर्व थोक सुनिए करता कह राज में राजोग में जोगी तब मैं तपिस्तर गृष्ट में भोगी त्याई त्याई भगत सुख पाया नान किस पुर का किनंत न पाया जाकी लीला की मित नाही जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवै जाए ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जा नाना रूप नाना जागे रंग नाना पेकर एक रंग नाना बिद किन्नो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे उपूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण।

सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करन हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जोत भावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझे तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रही गुर कै वचन पदार्थ लही उदाते दुकट नहार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोका सचुगा सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्य हवन हार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता पूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा करी दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपो होए बिसाना जिस ते उपजिया तिस माय समाना बस माए ले बस गडाई ताको पिना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानके ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धार है नानक सो सेवक साथ साथ संभार है अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख ताकि गत में कोई न लाख है प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचते उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राख भस्म कर लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काट ताप ताको राख देख रहा तू मानस जतन करत व पात इसके करत वृत जात बार न राख वरण कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबल कविडाणी बारंबार बार प्रभु जपिय पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रजो जन तृप्ताने मंथन नाम मैं नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सुर काम बोलो जा जी बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह कना जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मंत ने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु बुझाता सो जन सर्व थोक कर दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाप मिटावे और सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसकै संग सिखुद रह नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल सिक्की गुरु दुरमत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिक्के बंधन काटै गुरु का सिख विकार ते हटै सतगुरु सिक्को नाम धन दे गुरु का सिख वडभागी हे सतगुरु सिक्का हलत पल सुवार है नानक सतगुरु सिक्को जी नाल संभार है गुरु कै ग्रह सेवक जोर है गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर कच ना जनाव है हर हर नाम हृदय सत्या है मन बिच है सतगुरु के पात इस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बीस बिस्वे गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय हर नाओ अनक बार गुरु को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग दाता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सह सियान लया ना जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत गत चरण गत निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गय गवे सुन

0: वचन करण आघा नीमन संतोखातम पतिया ने
1: गुरागु रखियो जाका मंत्र अमृत दृष्टि पेखे हुए संत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक भावे तिसलै मिलाए जे पाए कुछ तत्नेक सतपुर पूर्ण भवेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी कमक प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन्ने न पाई अनिक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमर सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सो हो इस पुरखा नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणता साठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को थे मोह माया के संग न लेप मन में रख के हर हरे कंध कर दीपक प्रगासी नानक परमु दुख तहते नासे तप तुमाय ठाड वरताय अनंत भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदे से साधु के पूर्ण उपदेशे पाव चुका निरपो ही बसे सगल ब्याज मनते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी सा संग जपना मरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हज श्रवन निर्गुण अवसर गुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने जत प्रभा बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोई सर्व निरंतर एको सोयो पुत्र व्या रूप रंग भय प्रगा साध कह संग रच रचना अपनी कल धारी इनकवार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कुमावना नानक तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और उपासमित विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुण टुटता वै सो तन हर सेवा ते पावे ये सुख कौ नित बाचै मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिसो बा को करे भली करनी सा सोबा भज हर की सरनी अन को पावी रोग न जाए रोग मिटे हर वखद लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबोधो हर कह नाए दा जिस धावता बैठाए ताको बिघन न लागै कोई जा कर दै बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण हो आस भगत पाया तुम प्रगास तित कर जाए विषय विनाशी कहना निकाटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सुखा चुका चा आवा गौन मिटे प्रभ श्री बाप दया स्वर्ण गुरुदेव रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छूटन हारे सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचित नानक फल पाए संग न चालुस ते रहता ना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मतू ले याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करो मनमीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मनवाहि जन्म जन्म के किल बिक जाहि आप जपु हवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूछत हर को नाओ सह सुभाय नानक गुण गाओ त्रिउत्रस मैल बिन सुजाय हो मैं बिक फैल कोहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम सुमाल छाड़ सियानु सगली मना सास संपावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार यहाँ सुख दर गय जयकार सर्व निरंतर एको दे कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मने आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भये एक अराध प्राचित गए मंत्र निरंतर एक प्रवृत्ता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परे

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪਾਇ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਕ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਆਦੇਸੰਗ ਆਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਝੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬਿਰਧੇ
नमो शास्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सासाहं नमो कूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरदकर्ता अधो उर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेति अपेति अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततहमं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं आपेश हैं पूजं प्रयात शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व गयानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिज्ये कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांत्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल शांतत्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान ही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह है के बिख है जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपहूत अलख अपेश अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप आमीक अन उसतत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जेहे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाकत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार शंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपाओ प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो शहान शाह राजान राज पानान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र पालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार
मुन गण प्रणाम निरपय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडे अंडंड बाडे चाचरी शांत तुआ प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात शांद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने जा चरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परि है पवित्र प्रतिशय आदिशय आदृशय अकृशय भागवती छंद तुआ प्रसाद काथते के आशे ज देस के अभिज भेस के अगंज करम के अपंज परम के अभिज लोक के आदित सुख है के आवतूत वरण है के बेभूत करण के राजम प्रभा है के धर्मं तुजा है के आसुख वरण है के सर्वा आभरण है के जगतं कृति है के शत्रं शत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुपाव अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अहबुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनद है के रोजी दहंद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र फाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे कि हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तुरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल किराज

हैं, अछिज हैं, अच्युत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वी उल प्रवास हैं, निरुक्त प्रवाह हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रवाह हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुबाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, नचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्ब हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शांत प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंत्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंतर्मं, सर्वंजुक्ता, सर्वंमुक्ता, रसावल शांद त्वप्रसाद, नमो नर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं श्रीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दहेंद हैं के राजक रहेंद हैं क्रीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाइक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं कि नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सरबुल गुवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनल जमा हैं अमीकुल इमा हैं क्रीमुल कमाल हैं कि ज्योरत जमाल हैं कि अचलम प्रकाश हैं कि अमितो सुभाष हैं कि अजब स्वरूप हैं कि अमितो विभूत हैं कि अमितो पसा हैं कि आत्म प्रभा हैं कि अचलम अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शंतु अप्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रेत तर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आज जिना बात अनचंज गात अनरंज बात अन टट पंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म आत टीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत अरबूल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरिकाल्य है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जाप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृता अमृत है अमृतामृत हैं करुणाकृत हैं अकृताकृत हैं तरणी तृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजबाकृत हैं अमृतामृत हैं नरनायक हैं खालकायक हैं विश्वम्ब्र हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं भवभंजन हैं अरिगंजन हैं रेप तापन हैं जाप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कार हैं हर्ता हार हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं कुजंग प्रयात शंत नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसा ही पातशाहियां दी जागदी जोत बाणी के बोहेथ चवर ताकत शत्र दे।

प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवे जी। नाम चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत।

रहत दान, बबेक दान, वैसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शनी इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण सतगुरु, ने ताणियां दे ताण, ने ओटियां दी ओट, ने आसरियां दे आसरा, सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, गुरगद्दी ते विराजमान दसां ही पातशाहां दी जागदी जोत, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जियां का कोटान कोट शुक्र है महाराज जी। आप जिया ने अमृत वेले तो लैके महाराज जी खुले दर्शन दीदार बख्शिश किते, सतगुरु जी आप जी की टहल सेवा करदिया हुई बेअंत भुलों की खिमा कर देनी, अगे तो सतगुरु जी समत बख्शिश करो। आप जी के पावन अस्थान सिख गुरुद्वारा सनहोजे विखे महाराज जी अमृत वेले के दीवान सजाए गए, सजे हुए दीवाना दे विच संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ होए, उपरंत नितनेम दियां पंज बाणियां दे पाठ होए। महाराज जी बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा करनी, बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान करनी, बाणी दा भाव समुची संगत दे हिरदियां ते वसाउणा, बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा, सिखी सिदक केसां सवासां संग निभाउणा। महाराज जी दाराइयां संगतां दियां हाजरियां तेर फुल भेटावां प्रवान करनियां, सब दी हाजरी लेखे लाओ, दरों करों सिखी सिदक भरोसा, नाम दियां दातां दे के निवाजणा, सभनां नूं तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां महाराज जी, परिवारां विच सुख शांति वरतौणी, नाम दा प्रगाश करना, दुखां दा नाश करना, कमाइयां च वाधे पाउणे सतगुरु जी मेहर भरिया हथ रखना, बच्चियां नूं तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां, माता पिता दे आग्याकार बनाउणा महाराज जी, जो संगतां घरां दे विच बैठ के मीडिया दे राही महाराज जी आप जी दी याद विच जुड़ियां ने, तिन्हां दी अरदास, सभनां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी, अपने नाम दा रंग बख्शिश करना महाराज जी, सत संगत दे नाल रलाउणा महाराज, दर कर दे टहलियां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी, तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां महाराज जी, भै भावनी सदका अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने सतगुरु शुक्र है, चार पैर वैण सुख दी बतीत कीती सतगुरु जी, आया चार पैर दिन अपनी याद विच सुख दे नाल बतीत करौणा, सरबत्र संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, हर मैदान फतेह बख्शिश करनी जी। सतगुरु जी आप जी दियां बख्शियां होईयां दाता विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है, आप जी कृपालता करके भोग लाओ जी, भोग लगा शीत प्रसाद, साध संगत दे रसनी लायक होवे, जो छके सो आप जी दा नाम जपे महाराज जी, जिन्हां भंडारें चो रस्तां बस्तां हाजिर होईयां भंडारे भरपूर करने काल, कंटक चूर करने रस्तां दरगाहों भेजणियां सतगुरु जी, करो कृपा पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शिश करो जी, सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां दे मिलियां आप जीआं दा नाम चेते आवै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

काट काट नानक माझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवां। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्बाण कीर्तन गावहो करते का, निमुख सिमरत जित छूटै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां पर रही। गुरु प्यारी, गुरु खालसा, साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो, जो अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी दियां हाजरियां भरियां ने, गुरु की बाणी सरवण कीती है। सतगुरु जी सभना जिया दियां हाजरियां दर प्रवान करन, सभना नूं दर कर तों सिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां, तंदुरुस्ती दियां दातां बख्शदे होए, इसे तरह अपने पावन चरण कमलों के नाल सतगुरु जी जोड़ के रख लगे, इस जीवन नूं सफलियां कर देण। हुण समा होया है रोजाना दे नियम अनुसार श्री आसा जी की वार दे कीर्तन प्रारंभ होणगे। गुरु घर दे हजूरी रागी बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी मनमोहन सिंह जी आप जियां नूं आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण करवाउणगे। आप जिया ने एकाग्रता सहित गुरु की बाणी दे कीर्तन सरवण करके अपने जीवन दियां इन्हां घड़ियां नूं सफलियां बनाउण दा जतन करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पाखंड जो दिसे तिन जम जगती लुटे निर्वाण कीर्तन गावो करते
1: ठीक है।

सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर जमे सो कच निकल।

0: जी
1: पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझने सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया

जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझहता है। सजुग रसंतो का धर्म गर्थवा हो, त्रित रच जत का जोर गर्थवा हो, द्वापर तप

जग निफल तेह मानो जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों कौ पर हर गोविंद के गुण गावै। कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त।

अर्थ खोया, यह रखहु मन माही रहाओ। तीर्थ करे व्रत पुन राखे, नह मनुआ बस जाकू। निःफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या कहो।

जो प्रभु के गुण गावै। बिलावल अष्टपदिया महला पहला घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई विण पै पै भगत ना होई शब्द रते सदा सुख होई।

कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहने ते रहे न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई। ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई। मन मुख कथनी है पर रहत न होई, नाव भूले थाउ न कोई। मन माया बंधे सरजाल, घट घट व्याप रहे।

ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई बन मुख हौ मैं पत गवाई आपे करते भगत कराई गुरमुख आपे दे वडियाई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कछोत वेद पुकारे भगत सरूत।

नानक कहे अवर नहीं कोय। बिलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उचरे, माया मद माते तृप्त न आवे, तृप्त मुक्त मन साचा पावे, तन धन कलत सब देख अभिमाना, बिन नावे किछ संग न जाना रहाओ, की चह रस भोग खुशियां मन केरी, धन लोकां तन भस्मै ढेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन सबदै

त्रिहु गुण उपजै बिन सह दूरे, दूजी दुर्मत दर्द न जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, धोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़ै नाटशाला, नाम विसार माया मत पिया, बिन गुर भगत ना

एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जो तुसबाई, गुरमुखे आपे अलख लखैया। नानक दीन दयाल भए है, भगत भाई हर नाम सुमैया। बिलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्यावहु, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया।

आओ। पार अठारह में चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभिमान बिछुड़ दूर गैया। हार गत मित करता आपे जाने, सब बिद हर हर आप बनैया। जिस सतगुर भेटे सो कंचन हुवे, जो तुर लिखिया सो मिटे न मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरनी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया। परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते भाव नी कहिया। बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार न पावे परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकार है, धर्म करहु खट कर्म दृढ़ैया। मन मुख पाखंड भरम विगुते, लोभ लहर नाव भार बुढ़ैया।

वै गुरमुख परचै परम पद पैया एहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावह से कर्म कमैया नानक जंत बजाए वाजह चित भावै तित राहि चलैया बिलावल महला चौथा गुरमुख अगमे गोचर त्याया हौ बल बल सतगुरु सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर

मोती चूर वड गहन गहनैया, हर हर सरदा सेज बिछाई, प्रभ छोड़ न सकै बहुत मन पैया। कहे प्रभ अवर

प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करहे तेरे वस पैया। दया दीन करहु रख लेवो, नानक हर गुरु शरण समैया। बिलावल महल्ला चौथा। मैं मंतन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुरु देखे श्रद्धा मन पूरी, ज्यों चातक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया रहा, रोम रोम मन तन इक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया, वैदिक नाटक देख फुलाने। मैं हिरदे मंतन प्रेम प्रीर प्रेम पीर लगैया, हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम। ज्यों बिन अमले अमली मर गैया, जिनको प्यास हुए प्रभ कीरी। तिन अवर न पावे बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे। हों तिस विटहो बल बल घुम गैया, अनेक जन्म के विछुड़े जन मेले। जा सत सत सतगुरु शरण पवैया।

आवै प्रभ आए मिलै खिन ढील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कै घर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा धारी पहा पकर नानक कड़ लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात न कही मेरे प्रभ की उपमा जात न कही तज आन शरण गही रहाओ प्रभ।

कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परयो प्रभ दरबार प्रभ करहु साधु तूर नानक मनसा पूर बिलावल महला पंजवां प्रभ

रहाउ संसार भिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पूजा प्रभ जी लेहु हर नाम अपना देहु प्रभ तुझ बिना नहीं ठाऊ नानका बल बल जाऊ लोप मोह बाती देहे बिन भजन होवत खेहे जमदूत महा पहानु चित गुप्त कर मह जानु दिन रैन साख सुनाए नानका हर शरणाए पै भंजना मुरार कर दया पतित उधार मेरे दुख गने न जाहे हर बिना कत है सुमाहे गह ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्व घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोबिंद पूरन आस एक निमख रहन न जाए वट भाग नानक पाए

में बंद ज्यों ग्रस्त बिखई तंद ज्यों जुआर विसन न जाए हर नानक इहु मन लाए कुरंक ना दैने हो चात्रिक चाहत में हो जन जीवना सत संग गोविंद भजना रंग।

गिनती और सो गिनती जल जो गिनती बहुपात चार सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को रख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गोहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रोह के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रोह की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्यापे उस महानुप्रोह के चिन्हों नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल उदित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरवण प्रिय सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरवण प्रिय गुर इतिहासिक इतिहास सरवण प्रिय दासल फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकदस तिनगी गोद अनुमान है गुरु प्रसाद सिंह जी हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इन्हां विशेष गुरमत समागमां विच आप जी दी गुरबाणी कीर्तन सेवा करन दा सुभाग अते आप जी दे दर्शन करन दा सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश कीता है। बाणी दा कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन दी महानता, यह कीर्तन दी वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन दा आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसी रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो दूर बैठे श्रवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावे गुरु रामदास जी नूं प्यार करने वाला, उस दर नूं प्यार करने वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, ते उस लई इउं नहीं लगदा कि असी दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हां। उस लई इउं लगदा है कि धन गुरु रामदास पिता दी गोद श्री दरबार साहिब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर दी, उस घर दी। डिठे सबे थाव नहीं तुत जिहया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास सुर, हर हां नानक कस मल जाए नाय रामदास सर। तन तन रामदास गुर जिन सिर आत्मे सवारे। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उत्थे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इस लई सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आप जी श्रवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम अवखद मुख देवे काटे जम की फंद। करो कृपा सर।

जुगाद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा। आप जी इस शब्द सरुण कार्य से पावे समा हो चुका है, पर प्रबंधक वीरा वालों हुक्म है ऐसे कि थोड़ा जा होर ऊपर लालन समत से संगत विराजमान होएगी बैठी होएगी। आओ एक शब्द होर पढ़ के उस तो परंतु समाप्त करेंगे जी। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। सारे रल के इस पावन शब्द को पढ़िए।

गुरु स्वारी गुरु रूप सा संगत वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई ये पवित्र पावन गुरु मंत्र गुरु नानक पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीता है। यो गुरु मंत्र है जिस दे जपन नाल जन्मा जन्मा दी पापा दी मैल इस मन दे उत्तों उतर जाती है, क्योंकि सतगुरु जी सानू दसदे ने इस मन को जन्म जन्म की मर लागी काला हुआ सिया हो, जिदा स्याही होंदी काली ना। सतगुरु जी कहिंदे ने मन इहो जिहा बणिया पिया है, इसे करके संसार दे विच इह विकार भोगदा है। विचार माड़े ने परत दर परत इस मन दे उपर पापां दी मैल चढ़दी रहिंदी है। वाहिगुरु दा सिमरन इस करके है, वाहिगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं। सतगुरु जी कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागावे, सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते है। आवाज देनी है, उठ उठ भाई जाग। इस करके सिमरन करना है कि सुता होया मन जाग जावे। जदों मन सुता होया जागेगा ते उस वक्त इसका पार उतारा हो जाएगा। सुगुरु प्यारी साध संगत आओ पवित्र पावन शब्द श्रवण करिए। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर सद ही भरपूरा।

आओ गुरु प्यारे साथ सिंह जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला अते वैसाखी दा पूर्व ए दीवान इना खुशिया दे विच सजे हन। संगता बड़ी दूरों दूरों चल के गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तनहरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवा, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगता। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा दी भावना दे नाल कि मालका तेरे सण दे विच आए हाँ। कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी, आउण वाले समय दे विच संगता दे सारे कार्ज आप जी ने संवारने हैं। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी